उत्तम श्लोक साध के बचन अमूलिक लाल है रतन सुन मापत होत उदार आप तरह लोकतः निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा काय मन लागा रंग जय जय शब्द नाद बाजे सुन सुन अंत करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नान उधरे तिन कै साथे सरन जोग सुन

पूर्ण होई सेवक की सेवा जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभि खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमणि सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बसै सोहोत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होए तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होए बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकाल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहेब सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया सो दर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित वह सर्व संभाले

तदनु खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना यावन नानक विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखा कीता अपना ज्योतिस दी वडियाई ज्योतिस पा

या मह अमृत ज्ञान है, मानुख भगत बैराग, श्री गुरु ग्रंथ साहिब बंदों कर अनुराग, श्री गुरु ग्रंथ साहिब

आप अपनी बुद्ध है नेति बन भिन्न भिन्न तो हिते ती तुमरा लखना न्याय पुसारा के सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप रूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जेर ज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुआ बैठा कहूँ सिंह भयो शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाया चंप भया जुआ स्वरूप यंप आप रक्षा मेरी तुम करो सिख्यो उबार असिख्य संवर हो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तु हिताव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखते हुए मरे पुरख जमन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सवतारे जो कल को एक बार किया है ताके काल निक नहीं आया है रक्षा हुई ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाहि ने हरि हो ता किताब तर्क में हरि हो रित सिद्ध कर्म सब हुई दुच्छा श्व सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास देता है उबारा जिन नर नाम ते हारो कहा दारिद दुष्ट दुखते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हादय ले उबारी सर्व ठावर मोह सहाय दुष्ट लोक ते ले बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता कुल मिक सकल दे कुहरता दुष्ट दोखियन कोशय करता श्री अस्तुजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाशत फल पावे सोई दुख ना तसाय व्याप्त कोई अड़ेल सुनाए गुंग जो याए सर सुना पावई सुनाए मूर चितलाए चतुरता आवई दुख दर्द पाव निकना दिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत 1753 कहे जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गए जब ते तुमने तब ते को आतरे नैया न्यो राम रहीम पुराण पुना पुराण अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र बेसब भोपित कहे हम एक ना जान्यो श्री सपान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के गहो तोहारो द्वार बाहे गहे की लाजवास गोविंद दास तुहार

संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे।

सदा मिले सदा तिन्हीं सच को माया सद में से पाया जिनके जिनके सच हृदय सच बसाया मूर सच न जाने।

0: शरीर का इतना दवा हो दुख दुख फिर बटाई है ज्ञानी बुद्धता साधु रा संतोख का धर्म के स्वाह हो तेरे राज्य ते का जोर के स्वाह द्वापर रत पिता सत के स्वाह काल युग रा छगन का मूड के स्वाह मेला पहला
1: शाम कै सदंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सब कुछ असमा मेरी केरिया भरपूर राम नाम देवा में सूर नाय लै प्रचुत जाय नानक तो मुखम कृपाए जिज में जोर श्री चंद्रावल कान कृष्ण जादन पाया

सुने यार हमारे सजना, एक करो बेनतिया। तिस मोहन लाल प्यारे, हाँ फिराओ खोजंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे, एक भोरी दर्शन दी जय। नैण हमारे प्रिय रंग रंगारे, एक तिल भी ना तीरी जय। प्रभ स्यो मन लीना, ज्यो जल मीना, चात्रिक जिवै तिसंतिया। जन नानक गुरपुरा पाया, सगली तिखा बुझंतिया। जन नानक गुरपुरा पाया,

जुगो हो जोगे अटल चवर छतर तखत दे मालक सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहुर सर्ब कला भरपूर राजान राज पानान पहान देवान देव उपमा महान दुकालंग परनासी दयालंग सरूपे सदा अंग संगे अपंगम विभूते सर्ब सांझी वालता दे राहबर दया सिंध कोट ब्रह्मंडा दे मालक पातशाह जागदी जोत शब्द अवतार जगत गुरु शब्द गुरु पतित पावन भगत वशल पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे गुरता गदी तख्तां ते विराजमान सुभाए मान हो रहे सतगुरु दसाह पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यार वाली गुरु सवारी गुरु की खालसा साध संगत जीओ सतगुरु जी दी महान बख्शिश होई है कृपालता दयालता दा सदका दीवाना दे अंदर जुड़ बैठ के बहुत ही अदब सत्कार सहित एकाग्रता दे नाल आप जी ने सत्कार योग कीर्तनिया पासों रबी गुरबाणी दे कीर्तन हर जस सरवण कीते ने आवे साहिब चित तेरेयां भगतां डिठेयां मन की कटिया मैल साध संग उठिया और अज दा विशेष दीवान गुरमत समागम बाबा संग तिना दी मिठी याद विच दोसांझ कलां ते पादड़ियां दियां संगतां वालों आप जी उपराला करके सतगुरां दे चरणां दे विच हाजरीन हो रहे हो गुरबाणी दे राहीं गुरमत दे अंदर जो सतगुरु गुरदेव पातशाह ने आपां सारियां नूं जीवन नूं सुचजे ढंग दे नाल जीवन वास्ते जीवन नूं सफला करन वास्ते गुरमत दा उपदेश बख्शिश कीता है और ये जिहड़ा समागम हुंदा है गुरमत समागम जिथे गुरु दी मत धारण कीती जांदी है गुरु दी मत दी विचार कीती जांदी है गुर मत गुरु दी मत गुरु दी विचार गुरु दा शब्द सिख जदों सतगुरु दी मत नूं धारण करदा है
ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗਮ ਸਮਾ ਜਾਣ, ਮਿਟ ਜਾਣ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ।

अत संसार गुरबिन नाही सूझे, गुरबिन कोर अंधार गुरु बिन समझ नाया। बलिहारी गुर अपने द्योहारी सदवा।

मुर्शदे हर चीज में बायद बसे। भाई नंदलाल जी, मुर्शदे हर चीज में बायद बसे, मुर्शदे कामल पूजा मानद कसे। मुर्शदे हर चीज में बायद बसे, मुर्शदे कामल कुजा मानद कसे। मुर्शदे काम इलाजे दिल कुनद, मुर्शदे काम इलाजे दिल कुनद। ई मुरादे दिल से दिल हासिल शबद। सब जी कामल मुर्शिद पूरे गुरु विच और अधूरे गुरु विच की फर्क है? भाई सब ने बचन उच्चारण किया। भाई नंदलाल जी आखन लगे, मुर्शिद हर चीज में बायद बसे। हर चीज दे बहुत गुरु हो सकते, मुर्शदे हर चीज में बायद बसे। बाशिद बसे भी पाठ अंदर, मैं बायद बसे। हर चीज दे बहुत गुरु हो सकते हैं। मैं जिन्हों तो संगीत विद्या लाई उन्होंने गुरु जी आखते से बी एस नारंग जी जलंधर, पर पूरे गुरु विच और बाकी गुरुओं में थोड़ा फर्क है। किमें जी, मुर्शदे हर चीज में बायद बसे, मुर्शदे कुजा मानद कसे। पूरा गुरु कोई एक हुंदा नहीं जी, पूरा गुरु करदा की है? अखन लगे, मुर्शदे काम इलाजे दिल को नद। पूरा गुरु इस दिल दा इलाज करदा है कि दिल नू लगे हुए दुख दुखड़े दूर कर दिंदा है जी। इस करन दा फिर कुछ कुछ लेंदा भी है, कुछ फीस भी है उहदी? पैसा वाखन लगे, हाँ मुर्शदे कामल दी पूरे गुरु दी फीस भी है जी। की मुर्शदे कामल इलाजे दिल को नद। उसकी फीस है कि जिस चीज का इलाज कराना है ना, ये उन्हें देनी पड़ेगी, कि दिल उन्हें देना पड़ेगा, पाप फुली सरेंडर करना पड़ेगा। मुर्शदे कामल इलाजे दिल को नद, ही मुरादे दिल से दिल हासिल शबद। अपना दिल पेटा करना की है, ये आखना की

या फिर दिल देना, दिल भेटा करना, फुली सरेंडर, आत्म समर्पण करना की है। ये आखना की किस ही बोल को मंच निमाणी हिक तू, किसे नु कोई आसरा होगा पर मैनु ते पूरे सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी का ही वो आसरा है। किस ही बोल को मंच निमाणी हिक तू, क्यों ना मरी जय जा लग चित ना आ।

बहुत ही प्यारा है, अत्यंत प्यारा है। ग्रामर विच एक मिनट है, इंग्लिश की ग्रामर जो पढ़ते सन कॉलेज ते उदों ग्रामर दे च 3 डिग्रीज होंदिया सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मैं जिहड़े बच्चे पढ़दे नहीं हां तो क्षमा चाहुंदा हां, पॉजिटिव, कंपैरेटिव ते सुपरलेटिव। आ तेरा मुंह तो दिमाग पॉजिटिव, आ तेरा मुख तो दिमाग कंपैरेटिव। ते जदों बहुत ही प्यार विच आ गया, माँ दा दिल उछाले प्यार मारदा, बच्चे नूं फड़ के कहिंदी है आ तेरा मुखड़ा तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ते सुपरलेटिव व्याकरण तौर ते सतगुरां ने आख्या अत दा प्यारा साजनड़ा, साजन अखर भी वरत्या सतगुरां ने बाणी अंदर, पर इत्थे सतगुरां ने एक शब्द होर आंदा है जो दिसै गुर सिखड़ा, सिखड़ा अत दा प्यारा, ये तो उपर होर नहीं। इसे शब्द सतगुरां ने इत्थे वरत्या जानी अड़ा, अत दा प्यारा उहदे वर्गा होर कोई नहीं। इसे तरह पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड दैन सुपरलेटिव डिग्री ग्रामेटिकली सतगुरां ने वरती, आखन लगे सब आखो जी।

जे धावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सोहोई जननी केरे उदर उदर मैं ठंड किया दस

साधु संग की सुनो मेरे नीता, बिसर गई सब तात परार, बिसर गई सब तात परार, जब ते साथ संगत मोहे पाए, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग

0: जैसे बोझ भरी ना, जैसे बोझ भरी ना आंगरी तो पार होए, पार परे पूर सबे कुछ बेहात है। जैसे एकाहारी एक घरी पाक साला है, भोजन के बिंजना स्वाद के आघात है। जैसे राजद्वार जा कत जोहार जन, एक घरी पाछ देश भोगता है खात है। आठ ही पहर साठ घरी में जो एक घरी, आठ ही पहर साठ घरी में जो एक घरी, साध समागम कर निज कर जात है मेहमा
1: साधु संग की।
0: हरदी और चूना मिल अन्न पर्ण जैसे, हरदी और चूना मिल अन्न पर्ण जैसे, चतर वर्ण के तंबोल रस रूप है। दूध में जामन मिले दद के पखानियत, खांड कित चून मिल बिंजन अनूप है। कुसुम सुगंध मिल तिल से फुलेल हो, सकल सुगंध मिल अर्घ क्या रूप है। दो सिख साध संग, दो सिख साध संग पंच परमेश्वर हो। दो सिख साध संग पंच परमेश्वर हो, दस बीस तीस मिल उपमाओ खूब है मेहमा साधु संग। नहीं दद सा पिता पितामा पर पितामा, सज्जन कुटुंब सुत बांधव ना प्राता है। नहीं नन सा माता पर माता, वृद्ध माता मामू मामी मासी मौसा विविध बिखे आता है। नहीं ससरा सास सारा सारी, नहीं ससरा सास सारा सारी, नहीं बिरती सर और जा

गुर बाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जीओ गुरु गरीब निवास

ने कह वेद पुराण सिमरत सुधाख्यर कीने राम नाम एक आख्यर किनका एक जस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखिए कै दर्श तो हारो नानक उन संग मोहे उधारो।

प्रभु का सिमरन गर्भ नाम बसाए, प्रभु का सिमरन दुख जम नसाए, प्रभु का सिमरन काल पर हराए, प्रभु का सिमरन दुश्मन टराए, प्रभु सिमरत कछु बिघन न लागे, प्रभु का सिमरन अन दिन जागे, प्रभु का सिमरन भव न व्यापे, प्रभु का सिमरन दुख न संतापे, प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभु कै सिमरन रित सिद्ध नवनित, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु कै सिमरन जप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभु कै सिमरन तीर्थ सुनानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी, प्रभु कै सिमरन होए सो भलाव, प्रभु कै सिमरन सुफल फलाव, से सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए, प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभु का सिमरन उदरे मूचा, प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझाए, प्रभु का सिमरन सब के सुझाए, प्रभु का सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए, प्रभु जी बसाए साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु कौ सिमरह से धनवंते, प्रभु कौ सिमरह से पतिवंते, प्रभु कौ सिमरह से जन परवान, प्रभु कौ सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभु कौ सिमरह से बेमोता जी, प्रभु कौ सिमरह से सर्व के राज, प्रभु कौ सिमरह से सुखवासी, प्रभु कौ सिमरह सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जने आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला, प्रभु कौ सिमरह से पर उपकारी, प्रभु कौ सिमरह तिन सत बलिहारी, प्रभु कौ सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरह तेन सुख विहावे, प्रभु कौ सिमरह तिन आत्म नीता, प्रभु कौ सिमरह तिन निर्मल नीता, प्रभु कौ सिमरह तिन अंध कनेरे, प्रभु कौ सिमरै बसै हर नेरी, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभु क

नाम की महिमा संतरित वसाए संत प्रताप दुख सब नसाए संत का संग बुढ़पागी पाई आए संत की सेवा नाम त्याई नाम तुल कशवर ना हुए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्ब टडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत बखियान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग नमदे फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहुरत्ना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करै बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड

जात। एस देही कहो बहु साधना करै मनते कबहु न बिखिया टरै। जल तो वह बहुदे अनीत सुत कहा वे काची पीत।

बहुत सियाण जम का भाव व्यापै अनक जतन कर त्रिसुन्ना त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कूट पाप दरगै नहीं सजै।

आपन कर कर तू ठाकुर तुम पह अरदास दियो पिण सब तेरी रास तुम मात तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समगरी तुमरा सूत्र धारी तुम ते हुए सुआग्याकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक

दस वस्तु ले पाछे पावै एक बस कान में खोट गवावै एक पीना दे दस पीहर ले तो मूड़ा कौ कहा करे जिस ठाकुर से।

अगंत साहु अपनी देरास कातीत बरते अंडु उलास अपनी अमान कश बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी वस्तु तसे आगे राखे प्रभु की आज्ञा मन है मात है उससे चौगुन करै निहार।

ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास जैसे धरु परे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान।

कबहू महाक्रोध बेकरार, कबहू सर्व की होत्रवार, कबहू होए भय बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त मह आवै, कबहू भला भला कहावै, जो प्रभ राखै तब ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मून तारी लावै ध्यान, कबहू से तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधु मुख्यान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जियान, कजोन भरमै परमिया, नाना रूप जो सागी दिखावै, जो प्रभावै ते बिन चावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू सार संगत हो पावै, उस स्थान ते बहु न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं बेनास, मन तन नामृत एक रंग, सदा बसहि।

तिस देन हार जानेगा वार, जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नान, सो जन सदा रोग, ज्यो मंदिर को थमै थमन, त्यो गुर का शब्द मने अस्थमन, ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरह, गुर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर, जो अंधकार दीपक प्रकाश, गुर दर्शन देख मन होए बेगास, जो महा उद्यान मह मार्ग पावे, तो साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तैन संतन की वांछा तूर, नानकी हर लोचा पूर, मन मूर्ख काहे बिर लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए, दुख सुख प्रभु देवन हार, अवर त्याग तुत सहज तार, जो कछ करे सोई सुख मान, पूला काहे फिरे जान, कौन बस आई तेरे संग, लपट रहे रसलो भी पतंग, राम नाम जप फिर दे माहे, नानक वासती कर जाहे, जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, ताजब मान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय मैं तोल, लाद खेप संत है संग चाल, अवर त्याग विख्या जंजाल, तन तन कह सब कोय, मुख उजर अर्दर कह सोए, एह वापार वेला वापार है, नानक ता के सद बलिहार है, चन साध के धोए धोए पियो, अर प्रसाद कोय अपना जियो, साध की तूर करहो स्नान, सद उपर जाइए कुरबान, साध सेवा बटभागी पाइए, सार संगर कीर्तन गाइए, आनक बिगनते साधु राख, हर गुण गाय अमृत रस चाख, ओट गही संत है दर आया, सर्व सुख नान ते पाया, मृत कौ जीवा ननहार, भूखे कौ देवते आधार, सर्व निधान जाके दृष्टि माहे, पुरब लिखे कलैणा पाहे, सब किच तिसका ओह कन जोग, तस्में दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते उच निर्मल हे करनी, कर कृपा जिसका नाम दिया, नान सो जन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रती, तिस जनया हर प्रभु चीता, भगत भगत सुनिया त्यो लोए, जा कह हृदय को होए, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहता, साची दृश्य साचा आकार, सच वर्त साचा पासार, पार ब्रह्म जन सच कर जाता, नानक सो जन सच समा

तह कौन कौ मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश सह शल सिद्ध लगत कौ की सा। जोत स्वरूपी जय जोत स्वरूपी जो संग समावे तय किस भूकम दृतावे, कर्ण करावन हार कर्ण करावन कर्ण हार नानक का नाई समार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सत भाई, जय सर्व कला पे प्रवीण तय बीत देव का को चीना। जब अपने आप उतारे तब सगन अब सगन कहा विचार है, जय अपन ऊंचे अपने आप निरत है कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा। बिस्मन बिस्म प्रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप, जय छल छेद भीत समाय ऊहा किसै व्याप्त माया। आप सुकाओ आप या देश तय गुण का नाही प्रवेश, जय कै एक एक भगवंता तय कौन चिन्ह किस लागे चिंता। जय अपने आप तियारत है कौन कथ है कौन सुन निहारा, बहु बे अंत उच ते उचा नानक आप सुखाओ आप पहुँचा। जय आप रचियो प्रपंच कार तय गुण में कीनो विस्तार, पाप पुन तय पही कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावता। आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बख्यान। आपन

पूर्ण होए सेवक की सेवा। हाल जंजाल विकाते रहते, राव नाम सुर रसना कहते। कार प्रसार दया प्रवतारी, नानक ने भी खेप हमारे। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीता। सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन वसै सोत निदान। सार विछा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए स्थान, बहुर न होवे जा बहुर न होवे आवन जान। हर तन खाड़ चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिदनव निद, बुद्ध ज्ञान सर तै सिद्ध। विद्या ताप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सकल त्योदास। सुंदर चतुर तत का वेता, समदर्शी एक दृष्टेता।